0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकताको आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरञ्जनको अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ज
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो अभियान
3: Sanche Sonu FM Studio Time
4: It's 7 AM Bihana ko 7 baje
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब उखलढुंगा को मिलन चौकिया
1: होंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भर पर्दो
2: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
2: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: उखलढुंगा र खोटाङको दिक्चल बजारबाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनु का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: उखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारी भन्जाङ उखलढुंगा
1: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852988002222 र 9842880300

0: सोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
1: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
2: साउन्ड चेक सोलू एफएम स्टुडियो टाइम
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुकुन नगर पालिका 5 सोलू कुम्बू

0: आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय काठमाडौँमा पायल्स, फिस्टुला, फिसर लगायतका रोगहरूको दैनिक विशेषज्ञद्वारा परीक्षण, परामर्श तथा शल्यक्रिया सेवा उपलब्ध भइरहेको छ।
1: विशेषज्ञ सेवाहरू, निशुल्क शल्यक्रिया सेवा, अनुभवी आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सकद्वारा उपचार, छाल सूत्र लगायत आधुनिक तथा आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिको सुविधा, दैनिक ओपीडी तथा शल्यक्रिया सेवा।
0: रोग लुकाएर नराखौं, समयमै परीक्षण गरौं।
1: थप जानकारीका लागि आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय काठमाडौँ, फोन 01-4110-6690, 4110-6690।
2: स्वस्थ जीवनका लागि आयुर्वेद अपनाऊ।

0: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना आदरणीय सेवा ग्रही महानुभावर यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रभावी सेवा प्राप्ति को सहजीकरण को नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राख अनुरोध सेवा प्राप्ति में कति को प्रलोभन नगरी आपको सेवा लेना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कई गुनासो आए में गुनासो सुने अधिकार कार्यालय प्रमुख संपर्क राख सकने कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराट नगर आर्थिक वर्ष 2083-84 का लागि प्रदेशबाट संचालन गरिने आयोजना कार्यक्रम को लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धमा कोशी प्रदेश योजना आयोगको
1: आयोजनाको वर्गीकरण आधार तथा मापदण्ड निर्धारण र आयोजना व्यवस्थापन कार्यविधि 2082 भन्दैमा स्थानीय तह र प्रदेश कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष 2083-84 कार्यान्वयन हुने आयोजना कार्यक्रमको सम्बन्धमा यस आयोगबाट मिति 2082 साल चैत्र 9 गते आयोजना बहुसूचना प्रणाली मार्फत प्रस्ताव आह्वान भएको हुनाले 2083 साल वैशाख 62 गतेमा प्रणालीको प्रयोग मार्फत आयोजना प्रस्ताव गर्न हुन उक्त प्रदेश सरकार मार्फतका कार्यालय र स्थानीय तहहरूलाई जानकारीको लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। साथै आयोजना प्रस्ताव सम्बन्धमा स्थानीय नागरिकले सम्बन्धित स्थानीय तह र संस्थाको कार्यक्षेत्र रहेको स्थानीय तह तथा आयोजनाको सम्बन्ध कार्यक्षेत्रमा रहेको प्रदेश कार्यालयमा सम्पर्क राख्न अनुरोध गरिन्छ। प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना विस्तृत आयोगको वेबसाइट ppc.cc.gov.np हेर्न पुनः सबैमा यसै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ।
0: कोशी प्रदेश सरकार प्रदेश योजना आयोग विराटनगर नेपाल नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना आदरणीय सेवा ग्रही महानुभावर यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रभावी सेवा प्राप्ति को सहजीकरण को नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राख अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कति को प्रलोभन नगरी आपको सेवा लेना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कई गुनासो आए में गुनासो सुने अधिकार कार्यालय प्रमुख सुनवा संपर्क राख।

0: Rádio Unidos, o Lu é tempo tanda.
1: Lulu FM 101.2 MHz.
2: उज्ज्वल भविष्य को लागी हम अभियान
3: संचय सोलु एफएम स्टूडियो टाइम
4: साइंस पीएम सात को पांच बजे
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका पांच सोलु कुंभ।

0: सोनू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: टाइम चेक सोनू एफएम स्टूडियो टाइम
2: 6 PM साँझ को 6 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुकुन नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 MHz
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 MHz
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Soundcheck. Solar FM. Studio time.
4: It's 7 p.m. Start call 7 budget.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

0: Raio Rádio Insono é Pecuna.
1: Sono FM, 101.2 MHz. Ujjwal bhavishyako lagi hamro abhiyan.
2: Time check. Sono FM, studio time.
3: It's 9 p.m. Ratko 9 bajyo.
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुपुन नगर पालिका 5 सोलू कुंभू.
2: टाइम चेक सोलू एफएम स्टूडियो टाइम.
4: इट्स 8 पीएम रात को 8 बजे.
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुपुन नगर पालिका 5 सोलू कुंभू.

0: गर्भवती हुँदा के खाने?
1: स्तनपानको मात्रा कसरी पुर्याउने?
0: शिशुलाई कहिलेदेखि थप खाना दिने?
1: घरमै पाइने खानेकुराबाट कसरी बनाउने पोषण परिकार?
0: यसको जवाब अनुमानमा होइन,
1: हामी खोज्दैछौ वर्षौंको अनुभवी आमा र बेबीको संवादबाट।
0: भिडियो कार्यक्रम पोषण संवाद यूआईएन मार्फत तपाईँको घर नजिकैको सामुदायिक रेडियोमा हरेक बुधबार बिहान 6:30 बजे र पुनः प्रसारण राति 8 बजे।
1: सँगै सीआईएन को फेसबुक पेज, यूट्यूब र टिकटकमा पनि। मिशनको सही जानकारी, स्वस्थ जीवनको बढी तयारी।
2: सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन।
3: क्लासिक टेक को वाईफाई 6 राउटर नाम एक घाम अनेक शक्तिशाली 4 एंटीना में वाइड कवरेज 5G स्ट्रेंथ लो लेटेंसी र फास्ट स्पीड सबै अस्त्र को शक्ति बोके को 200 Mbps को इंटरनेट अब 3 महीना का लागि मात्र 3300 रुपया में साथ में IPTV मात्र 250 प्रति महीना बुकिंग को लागि 9801004477 शर्तहरू लागू हुनेछ। क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो।